0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
1: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM, आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: टर्न इट अप रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
7: Attention!
8: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
9: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
10: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
9: सलासा ट्यूशन सेंटर?
10: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
9: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
10: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
9: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
11: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
12: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
14: यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07-59-150-669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 011-592-9884 या 077-021-07932।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: प्यार कर दिया
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

तन्हाइयों में जाने दे। अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

Letter, the radio station for people who love music. 107.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अता कर आई उससे खुश आमदेद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम स्वागतम जी उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। डैप पे जनाब आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे और ऐप पे टोन अप करने के लिए आपको क्या करेंगे, टोनी ट्यून अप करने के लिए आपको जनाब करना पड़ेगा क्या, आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में लिखा फैजा FAZA आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर।

फिर से एक बार ताज़ा तीन मौसम की सूरत हाल आपके सामने रखे देता हूँ। प्रोग्राम का तो ऑन एयर काफी टाइम जा चुका है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अपडेट भी होते रहे, यही है मेन मकसद। तो जनाब आपको बताते चलेंगे, इस वक्त फजा में ह्यूमिडिटी का लेवल है 11%। रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से नॉटिंगम शायर का जो टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया गया वो है जनाब 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 11 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। जनाब मौसम है सनी, शाइन भी है और हल्की फुल्की ठंड है, कदरे बेहतर मौसम है कल के हवाले से, लेकिन गुजरा हुआ कल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा आपको बताते चलें कि इसके आगे यानी 2 PM एंड ऑनवर्ड्स टिल 7 PM आपके पास जो मौसम है वो हल्का सा अबर आलूद रहेगा, यानी बादल से छाए रहेंगे, सनशाइन कहीं चली जाएगी, लेकिन आप लोग अपने दिलों में झांक के वो रोशनी देख सकते हैं जो रोशनी शायद किरणों के नाम लेकर इस कायनात को मुनव्वर करती है, दुनिया को मुनव्वर करती है, लेकिन जो रोशनी आपके दिल के अंदर से निकलती है वो आपके जज्बात को मुनव्वर करती है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारती है और उसके साथ साथ आपको इस वक्त मुकाम देती है, आपको एक तगड़ा मुकाम देती है, ताकि आपने आज के दिन के हवाले किस तरह मैनेज करना है अपने आप को, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि आज की जो मोटिवेशन, आपके जो सब्जेक्ट हैं, आज के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, वो किस तरह

0: से कयाम पजीर हो चुके हैं या किस तरह से वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये जनाब सारी वो बातें हैं जिन बातों का अक्सर आपको पता है और जिनका नहीं पता उनका मैं आपको बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये खूबसूरत सफर रवान दवा है। आपसे गुजारिश है कि ट्यून अप रखिए क्योंकि अभी हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहती है फिर से मुलाकात। स्टे ट्यून एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक।
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 0757729926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: प्लानिंग टू अपग्रेड योर होम और बिजनेस स्पेस? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: It's music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदा गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए थैंक्स लॉर्ड जनाब जिन्होंने इस वक्त तक हमें ट्यून करके रखा है, और वेलकम उन समातों के लिए जी, वेलकम उन समातों के लिए जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून अप किया 97.1 एफएम पे, डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। अलावा जी आपको ये बताते चले कि ना ऐप के अलावा भी आप हमें सुन सकते हैं। जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हमें ट्यून करना चाहते हैं कानों में हेडफोन लगा के, आपसे गुजारिश है कि ये काम मत कीजिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपका काम का स्केड्यूल है, तो फिर अपना काम ध्यान से कीजिए। लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो फिर आपसे गुजारिश है कि एड्रेस बार में लिखिए live.radiofza.co.uk। के अलावा जी हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन हैं उनके बारे में जानने के लिए आप ट्यून अप कर सकते हैं हमें। इसके अलावा ट्यून अप करने के साथ साथ आप radiofza.co.uk पे विजिट भी कर सकते हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, जहां पे भी आप हमें सर्च करेंगे, आप रेडियो 97.1 एफएम के ऑफिशियल से हमें सर्च करेंगे, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए, और एहसास दिलाइए अपने होने का।

और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप ये क्यों शोर कर रहा है, चले इसे करते रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। तो जनाब आपको ये बताना था, बल्कि समझाना था और ये पूछना था आपसे कि आप सब लोग कैसे हैं, कैफ अहवालक मगंग नगुमा गाइंदे वर्तनम सुगम सुगमन केम चो बोन जो की हाल चाल है मेरा तेतवाड़ा। जो अहबाब हमें मैसेज कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे अभी तक, उनसे ये गुजारिश है कि आप हमें व्हाट्सएप पे लाइव मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आज की विशेष टिप्पणी, आज के आपके विचार क्या हैं, आज की आपकी सोच क्या है, सोच की धारा किस सिमत में बह रही है, कहां तक जाना चाहते हैं या किस तरह किस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, कहां तक चलेंगे, ये सारी चीजें आपने मुझे बतानी है 1157 0971 पे मैसेज करके। और मैसेज हमारे तक पहुंचेगा, लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के लिए भी आपको सेम व्हाट्सएप पे हमें कॉल करनी पड़ेगी और आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ हमारे गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में। तो जनाब कोट ऑफ द डे आपके सामने रखी जा चुकी थी पहले भी, एक बार फिर से मैं आपके सामने रखे देता हूं और आपको बताता हूं कि अक्सर लोग होते हैं बड़े ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बड़ी ज़्यादा उनकी एक थोड़ी सी ना मोटिवेशन डिस्टर्ब रहती है जब कोई ना उनसे बदतमीजी करता है, बद तहजीबी के जुमरे में आता है या कुछ ऐसा होता है कि वो कभी कभी इस कोशिश में रहता है या इस सिचुएशन में रहता है कि उसको एहसास नहीं होता कि उसके आगे पीछे कौन से लोग हैं। बहुत ज़्यादा बिजी लोग भी ऐसे होते हैं, मेहनत ज़्यादा करने वाले, सोने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। फिर जब उनसे कोई बंदा बात करता है या कोई उनसे बदतमीजी करता है या बद तहजीबी से पेश आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें होता यह कि बड़ी ज़बरदस्त से बड़ा सियाना एक बंदा है, जैसा कि जो ही मैंने सियाना कहा आपने मेरी तरफ देखा तो आपको ये बताते चलें कि जनाब कहते हैं किसी की बदतमीजी से ना घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। ठीक, समझदारी इसी में है, इंटेलिजेंस इसी में है कि आप इन्हें पहचान कर आगे चल दें। जैसे कि कल मैंने आपसे एक जबरदस्ती बात की थी और आज भी उसी बात के दूसरा पहलू है कि किसी चीज़ को इग्नोर कैसे किया जा सकता है। किसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ का नोटिस करना जरूरी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आप नोटिस करेंगे गंभीरता के साथ गहराई से उसको आप सोचने समझने की कोशिश करेंगे तो फिर ही आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग आपसे बदतमीजी करते हैं उनको बस ये समझें कि उन्होंने अपना तारुफ आपको करवा दिया, आपने उन्हें पहचाना और फिर आप आगे चल दिए। ये है ज़िंदगी की टोटल कहानी। कहते हैं ना चार दिन की ज़िंदगी है, कौफ से क्या फ़ायदा, खा पी मज़े कर, ज़िंदगी को इंजॉय कर और इसके अलावा हम कर भी कुछ नहीं सकते। अगर हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे कि यार किसी ने बदतमीजी की, किसी ने किया, या अपनी अना बना लेंगे तो फिर आपका जो एक्सेलरेटर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, आप रेस नहीं दे सकें जो आपने अपनी कामयाबी के, अपनी सफलता के जो रास्ते आपने सेलेक्ट किए हैं उन रास्तों पर आप चल नहीं सकेंगे। और जब आप उन रास्तों पर चल नहीं सकेंगे आप थोड़े से डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो लोग आपको उन रास्तों पर चलाने के लिए हायर करेंगे, फिर आप मजबूरी में उनके पास नौकरी करेंगे और जब आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो फिर आप हर लिहाज से अपने आप को परफेक्ट रखते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना बिजनेस किया, अपना कारोबार किया, जिंदगी में अपनी कामयाबी हासिल की लेकिन उसमें वो कामयाबी आपको नहीं मिली, आप लॉस कर बैठे, तो फिर जब आप नौकरी करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिल के साथ, बहुत ज़्यादा लगन के साथ वो मेहनत करने की कोशिश करेंगे जो आप अपने सेटअप में, अपने बिजनेस में करना चाहते थे, ताकि आपकी वजह से अब किसी और को लॉस ना हो, किसी और को नुकसान ना हो। तो उस एरिया में जो लोग आपके पास पहले सीनियोरिटी के लेवल पे आएंगे वो आपसे बदतमीजी भी करेंगे, वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे और वो आपको नहीं चाहेंगे कि आप किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचे। तो फिर आप यही करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के बदतमीजी से आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपना तारुफ उसने करवा दिया आपको, आपने उसे पहचान लिया, अब आप आगे निकल जाएं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक चीज़ को नोटिस किया और उसके बाद उसको इग्नोर कर दिया।

तो जनाब, इसी मोटिवेशन, इसी सक्सेस और इसी सफलता का नाम है कामयाबी। और अक्सर जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे आगे पीछे, वो एक ही बात अक्सर कहते हैं, अक्सर दोहराते हैं कि जनाब सबसे बड़ी पावर आपकी क्या है, सबसे बड़ी पावर आपकी स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल, वो कोशिश, जो कोशिश हमेशा एक दूसरे के नाम रहती है, जो कोशिश इसलिए की जाती है कि आप कामयाबी हासिल करें। अब कामयाबी का डिफरेंट लेवल है, जैसे कि पहले भी बताया गया। एक बार सक्सेस पे हम एक बार पूरा प्रोग्राम करेंगे, इसकी बहुत बड़ी वजाहत है, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, एक पूरी यूनिवर्स है, एक पूरी कायनात है। लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास कब होता है, जब कामयाबी हमारे कदमों के नीचे आती है। उससे पहले हमें एहसास नहीं होता, उससे हमें पता भी नहीं चलता, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोटिवेट तो रखती हैं, लेकिन हमें अंदाजे में नहीं रहती कि वो चीज़ें कभी कभी हमारे पास आने से पहले किन्हीं और लोगों के पास, किसी और लोगों के पास जा चुकी होती हैं, कि और सिचुएशंस होती हैं जो उनके सामने क्लियर होती हैं, लेकिन वो सिचुएशंस आपके लिए, मेरे लिए कभी कामयाबी का एक रास्ता नहीं बनती। वो सिचुएशंस, वो हालात होते हैं, वो इन्वायरमेंट होता है, उसमें फिनोमिना कुछ डिफरेंट होता है, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, स्पॉन्टेनियसनेस इंसान की तबाह हो चुकी होती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनमें यह आदत होती है बहुत ज़्यादा ऑन द स्पॉट हर चीज़ का रिप्लाई करना, हर चीज़ पे महारत रखना, हर चीज़ पे अपने आप को फोकस करवाना, और हर चीज़ पे ये सोचना कि जब तक मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर लेता, मैं इन चीज़ों को साथ लेके नहीं चल सकता, तब मेरे पास वो रास्ता नहीं आता, तब तक मेरे पास वो कामयाबी का, वो मुझे रोड दिखाई नहीं देगी, वो मशाले राह, वो रोशनी मुझे दिखाई नहीं देती, जो उस राह की रोशनी होती है, जो उस राह को मुनव्वर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे दरमियान जो उस रोशनी को समझते हैं, उस रोशनी की काविश उनकी ऐसी होती है कि उस रोशनी को वो ले के चलना, यानी ढूंढना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं कि हम मिल जाएं, हम देखें किसी न किसी चीज़ को, फोकस करने की कोशिश करें कि जब हम फोकस करेंगे तब ही हमें वो रोशनी मिलेगी। लेकिन वो रोशनी ढूंढने के लिए इंसान को पहले फोकस करना पड़ता है, और सबसे बड़ी जो स्ट्रगल, सबसे बड़ी जो पावर इंसान की होती है, उसकी वो कोशिश होती है जो उस रोशनी को ढूंढने में वो लगा देता है। और जब इंसान को वो रोशनी मिल जाती है, तब फिर उसको ऊपर वाला, यानी भगवान, खुदा, मस्जिद, मंदिर, व्हाटएवर, जिस भी मजहब के हवाले से वो ताल्लुक रखता है, उसको एक ही खुदा, एक ही अल्लाह हर तरफ नजर आता है। और जब ये सिचुएशन उसको मिलती है, तो फिर कोई लोग होते हैं जो मंसूर अल हज्जाल अल हाज बनते हैं, कुछ शेखसादी बनते हैं, कुछ स्टीफन हॉकिंस बनते हैं, कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन बनते हैं, कुछ बिल गेट्स बनते हैं, कुछ बाबा महादेव बनते हैं, और कुछ बुद्ध महात्मा बनते हैं। लेकिन इन सारी सिचुएशंस में अगर घूम फिरा के देखा जाए, तो ये वो लोग हैं जो उस रोशनी की राह को चुनने के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि जितनी भी जनता, जितनी भी आवाम उनको फॉलो करती है, जितने लोग उनके साथ रहते हैं, वो हमेशा उनके पास रहते हैं, उनके दिलों में बसते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, तभी उनको कामयाबी, सफलता का वो रास्ता मिलता है, जिस रास्ते को वो सारी जिंदगी ढूंढते रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो रास्ता नहीं मिलता है। नहीं तो जनाब, ये था जनाब जबरदस्ती मोटिवेशन की थोड़ी सी स्पीच, जो मेरे लफ्जों से आपने सुनी, इजहार ख्याल मेरा था, लेकिन इसके पीछे अल्फाज कई लोगों के हैं। जनाब कहते हैं ना, थ्री डेट का बड़ा जबरदस्त एक सीन है जो मुझे याद आ गया, जब वो क्या कहते हैं, वो स्पीच कर रहे होते हैं मोहतरम, जिनको उर्दू भी ठीक से नहीं आती, तो कहते हैं कि उससे पीछे एक लाइब्रेरियन होते हैं। देखिए, लोग अपनी जो सफलता है उसको मनवाते कैसे हैं, अब उन्हें नहीं था पता कि आगे क्या होने जा रहा है। व्हाट एवर द वर्ड्स ही इज गोइंग टू यूज, वो उसने यूज नहीं किए, उसने नहीं किए, लेकिन प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब जो अल्फाज वो बोल रहे हैं वो उनके मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन अल्फाज मेरे हैं। तो जनाब, कभी कभी अल्फाज आपके होते हैं, यानी काविश आपकी होती है, लेकिन उसको प्रेजेंट कोई और कर रहा होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो बैकअप पे रहते हैं, जो पसे पर्दा होते हैं, वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में। उन लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए। कभी कभी पर्दे पे जब आप उनको लेके आएंगे, तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा इस चीज़ का कि उन लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो लगन है, वो प्यार है, वो मेहनत है जो वो आपसे करते हैं। इसके अलावा अपने काम में महारत तो वो रखते हैं। तो जनाब, ये थी हमारी छोटी सी गपशप, ट्रैक्स भी आपके साथ लगाऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सी अनाउंसमेंट है। इस 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान फॉर्म नॉटिंघम। कहाँ पे जनाब? एक्सेलसियर नवाब 5-7 लोटस रोड नॉटिंघम पे जनाब। बिल्कुल, कौन आ रहे हैं? द ग्रेट सूफी सिंगर
माई फेवरेट एंड फेवरेट ऑफ ऑल साउथ एशियन कम्युनिटी जनाब द ग्रेट समन मारवी होंगे जनाब लाइव इन नॉटिंघम. इसके साथ होंगे हसीब हेस एंड जुकी. अपनी परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे झटके इवेंट्स. रेडियो 97.1 FM मीडिया पार्टनर है. आपको ये बताते चलें कि जनाब जल्दी कीजिए क्योंकि आप लेट हो चुके हैं. जो VIP टिकट्स हैं ऑलमोस्ट सोल्ड आउट. बहुत ही मुश्किलों से ये टिकट्स अब भी लोगों को मिल रहे हैं. नॉर्मल बुकिंग के लिए जनाब और VIP बुकिंग के लिए दोनों पे आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है 07802988615 पर या फिर 07152997779 पे. जनाब 6 PM ऑनवर्ड्स गेट ओपन हो चुका होगा और 14 अगस्त यानी फ्राइडे को जनाब आपने भूलना नहीं है. इसके अलावा जनाब आप क्या करेंगे एक्सेलसियर नवाब .co.uk इस पर आप विजिट करेंगे, बार कोड स्कैन करेंगे और फिर आप टिकट्स भी परचेज कर सकते हैं. तो जनाब ये इंपॉर्टेंट ही समन मारवी की जो परफॉर्मेंस है, ये ऐसे सूफी सिंगर हैं, ये ऐसे लोक सिंगर हैं, ये ऐसे क्लासिकल सिंगर हैं, ये ऐसे कह लें कि आप जज बज वाले सिंगर हैं कि जनाब इन लोगों को कभी कभी सुनने का मौका मिलता है. तो ये चांस जाया मत कीजिए नोटिंगम वालों. अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए और उन्हें बताइए कि हाउ एक्टिव यू आर.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक। ये थी ना ग्रेट मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी ऑफ हमारे जो पर्सनैलिटी जो मेरे गेस्ट थे आज रॉबिन एटकिंसन यानी कि मिस्टर बीन। तो जनाब ये देख लें कि क्या सिचुएशन थी क्या सिनेरियो था, लेकिन कुछ टाइम हमारे दरमियान रह चुका है। हल्के से ट्रैक्स आपके लिए मैं प्ले करूंगा और कुछ ट्रैक्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। इन ट्रैक्स को एंजॉय कीजिए, मोटिवेट भी रही आज के दिन के हवाले से।

0: जी तो लिसनर, अगर आपका भी दिल कोई ऐसे ही लेके जा चुका है तो फिर उसको शामिल कर लीजिए अपनी जिंदगी में, अगर आपके आसपास हैं तो। मोटिवेट रखिए अपने आज के दिन को, ट्यून करके रखिए 97.1 FM को। कोई भी मुश्किल परेशानी आती है तो सबसे पहले उसको नोटिस कीजिए, नोटिस के बाद उसको इग्नोर करना सीखें, लेकिन कुछ ना कुछ सबक लेने के बाद कि आपने अपनी से एक्सपीरियंस से सीखा क्या है या आपने आगे क्या करना है। Stay tuned with 97.1 FM and DAB, and here you go, signing out RJ Nasir Khan. जी बिल्कुल नासिर खान जनाब, आपसे इजाजत चाहता है। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय नॉटिंगम।
1: It's commercial time.
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

जब आप ऑटोमेटिकली प्लान कर लेते हैं कि अच्छा आज के दिन मैंने ये सब काम करने हैं, चीज़ों को इस तरह से यूटिलाइज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सो फिर काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है और वो जो हमारे एक माइंड में स्ट्रेस सा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा कहाँ से शुरू करें, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो डियर लिसनर्स, इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 0115710091। ये है मेरा और आपका राब्ते का नंबर, यानी रेडियो फजा 97.1 FM का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। सो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ना सिर्फ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आज के दिन के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं, साथ ही साथ आप मुझसे ले सकते हैं कोई भी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आज के कामों का स्टार्टअप लिया जाए, तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई मेक श्योर कि मैं अच्छी अच्छी एडवाइस दूँ और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँ। इसके अलावा आप इस नंबर के थ्रू हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह के टॉपिक्स को सुनना चाहते हैं या आप किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करूं, साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का है म्यूज़िक पसंद। सो पूरी कोशिश यही की जाएगी कि हम डीवा डायलॉग में वही तमाम तरह गाने शामिल करें जो कि हमारे लिसनर्स सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। सो ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के इस फैमिली का हिस्सा, जहां आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है तमाम तर आने वाले नए इवेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ इस चीज़ से रिलेटेड कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस शो में है आने वाला। सो अगर आप हमारी तमाम तर लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉग इन करना होगा इस वेबसाइट को। वेल अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका तरीका बहुत सिंपल सा है। सो आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपको सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM। एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, यही है हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, बंधे रहें और आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। सो वेल लिसनर्स, ये वो सभी तरीके थे जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं जो कि मैंने वन बाय वन आपसे शेयर कर दिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमारे इस शो में शामिल होते हैं। सो शो का बकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, आप हैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे। वेल अगर अभी तक आपने इस खूबसूरत दिन का आगाज कर लिया है तो इट्स ग्रेट, लेकिन अगर अभी तक आपने इस दिन का आगाज नहीं किया तो आइए मिलकर करते हैं इस खूबसूरत से दिन का आगाज। सबसे पहले तो फ्रेश होकर इस डे का स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छा हेल्दी मील, क्योंकि जैसा कि हमारी आजकल की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक फास्ट चल रही है, हमें डेली बेसिस पर बहुत सारे कामकाज करने होते हैं, डेली बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, हैंडल करना होता है, सो उस सब के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें एक अच्छे हेल्दी मील से। सो सबसे पहले आपका प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप पूरे दिन की स्ट्रगल को हैंडल कर सकेंगे। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत किया करें, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ अगर आप चाहें आपका कभी दिल ना करे तो आप दिन का मील स्किप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। वेल
ये तो बात होगी उस एनर्जी की जो कि हमें मोटिवेट करती है पूरा दिन काम काज करने में। अब से बात करते हैं माइंड की। अच्छा, सुबह के आगाज़ में हमें ज़रूरत होती है माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की, क्योंकि मोस्टली सुस्ती छाई हुई होती है और दिल का रहा होता है कि इंसान मज़ीद थोड़ा देर सो ले। सो उस माइंड को फ्रेश करने के लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छी सी थेरेपी की। और जहाँ हम बात करते हैं थेरेपी की, तो बहुत सारी थेरेपीज तो बहुत एक्सपेंसिव है, सो हम एक्सपेंसिव की तरफ तो नहीं जाएंगी, लेकिन म्यूजिक इट्सेल्फ इट्स अ चीपेस्ट थेरेपी। सो आइए मिलकर सुनते हैं एक अच्छा सा एनर्जेटिक सा ट्रैक, एक ऐसा ट्रैक जिसको सुन के माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और हम शो का बाकायदा आगाज करें। सो डियर लिसनर्स, आप सभी के लिए प्ले करती हूँ एक बहुत ही अच्छा सा शानदार सा ट्रैक। आप सुनकर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं ट्रैक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
2: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
1: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
2: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
1: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने
2: चलें उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
1: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
2: जबरदस्त मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है 01156713677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को टीवा डायलॉग में खुश आमदीद। सो मैं हूँ आप सभी की होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो टीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। वेल सर, जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरह से आप हमारी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से हमें ट्यून कर सकते हैं, तो अब से बात करते हैं उन सभी लिसनर्स की जो कि ड्राइव कर रहे हैं या फिर हैं अपने डेस्टिनेशन के करीब या हैं इस वक्त सफ़र में, तो वो चाहते हैं कि उनका ये सफ़र, उनकी ये जर्नी या फिर उनकी डेस्टिनेशन बन जाए और भी ज़्यादा खूबसूरत। सो आप इसको भी खूबसूरत बना सकते हैं किस तरह से हमारी अच्छी अच्छी सी आवाज़ों को सुनकर, उसके लिए आप हमें फजा डैप के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। तो लिसनर्स, अभी हमारे लिसनर की रिक्वेस्ट है कि उनका पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए। वैसे तो ये गाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वीकेंड सॉन्ग्स। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये एनर्जेटिक सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पर अगेन कंटिन्यू करते हैं यहीं से।

वेल, इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट सेगमेंट। जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रीवा डायलॉग का हमेशा से फर्स्ट सेगमेंट रहता है थोड़ा मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, साथ ही साथ पॉजिटिविटी से भरपूर। सो हम पूरी यही कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में हम थोड़ी मोटिवेशन की बात करें, साथ ही साथ पॉजिटिविटी की बात हो, और अगर आपके ज़िंदगी में कोई डिफरेंट सिनेरियो चल रहा है जिसके तहत आप फील कर रहे हैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड, सो उसको थोड़ा सा कम किया जाए। सो आज का हमारा फर्स्ट कोट किस चीज से रिलेट कर रहा है, आइए आपसे शेयर करती हूं। सो आवर फर्स्ट कोट इज ऑल अबाउट इनर स्ट्रेंथ एंड स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो द फर्स्ट कोट सेज फेड विस्पर्स टू द वुल्फ यू कैन नॉट विदस्टैंड द स्टॉर्म, द वुल्फ विस्पर्स बैक एंड आई एम द स्टॉर्म। आपने अक्सर देखा होगा कि जब जिंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या फिर इस बारे में कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। होता है ना कि इंसान एक पॉइंट पर आकर इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि उसे लगता है कि दुनिया की जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो बस उसी के साथ हो रही हैं, बाकियों की लाइफ देखो कितनी अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है। सो दिस कोट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वेल लिसनर्स, इस कोट को मजीद एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगी कि आज का हमारा फर्स्ट कोट क्या कहता है, पर फिर वक्त के लिए हमें आई है एक अदद और मजीद सॉन्ग रिकमेंडेशन। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये अच्छा सा ट्रैक, एंड देन ट्रैक से वापसी पर यहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं।

जी तो लिसनर्स, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपने फर्स्ट कोड को. सो हमारा जो आज का कोड है, इसका बेसिकली मीनिंग कुछ यूँ है कि जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड. हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल या तूफान आता है, तो पहला ख्याल जो हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर आई कॉन्ट हैंडल दिस. हम खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वीक समझ बैठते हैं, लेकिन असली बात पता ये होती है कि जो इंसान की स्ट्रेंथ और विल पावर होती है, वो कभी भी इजी डेज में आपको नहीं दिखाई देती, वो आपको सबसे मुश्किल दिनों में ही दिखाई देती है. जैसे ही हालात बदलते हैं, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, देन यू विल रियलाइज कि आखिर आप इसको किस तरह से टैकल करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे, और क्या आप इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल पाएंगे या नहीं. सो माय डियर लिसनर, जिंदगी जब भी कभी आपको झुकाने की कोशिश करे, तो मायूस होने के बजाय आप सर उठाइए और अपने इन हालात का सामना कीजिए, क्योंकि जिंदगी तो इंसान को ऐसे सिनेरियो में ले आती है जहां इंसान को ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, आई कॉन्ट टेक दिस. लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता. हालात जैसे मर्जी हों, वो अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमेशा 100% में से 90% यही कोशिश करता है कि जैसे तैसे करके मैं खुद ब खुद इन चीज़ों को मैनेज कर लूँगा. अपनी अंदर की ताकत पर यकीन रखें, आप हर मुश्किल से लड़ सकते हैं. ये था हमारा आज का फर्स्ट कोड. कैसा लगा आप सबको? आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सिनेरियो आया हो जहां आपको ये चीज़ बहुत ज़ोर से हिट कर रही हो कि सब आपके साथ ही बुरा हो रहा है, या आपको हर तरफ से ऐसा लग रहा हो कि आपकी ज़िंदगी के दरवाजे हो चुके हैं बंद, और उस तरह के सिचुएशन में फिर आपने क्या किया, किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल किया और किस तरह से खुद को टूटे नहीं दिया. सो इसके लिए 0115710971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, यानी कि ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से कुछ आपकी दास्तान सुनी जाएगी और साथ ही साथ कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी. सो आप बिना झिझक इस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. अब जरा बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोड की जानिब, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक अदद ट्रैक. ट्रैक से वापसी पर फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेकंड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल प्लस ऐसा कोड जो कि आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक तब्दील कर देगा और ज़िंदगी में अच्छे अच्छे से पॉजिटिव पॉजिटिविटी को लेकर आएगा.

ठीक है तो लिसनर्स, अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे कोड की जानिब। सो ये कोड उन सभी लिसनर्स के लिए है जो कि इस कोड के अंदर मौजूद है एक बहुत ही अच्छा स्वीट सा पैगाम, जो कि जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ उन्हें उनकी मेहनत का रिवार्ड नहीं मिल रहा। सो दिस कोड इज़ ऑल अबाउट यू। So listen to this very carefully. Do not worry about the future. The same God who take care of you today will take care of you tomorrow. क्या बात है, हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सिर्फ इसी डर में गुजर जाती है कि कल क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अगर मेरी जॉब ना रही तो मैं अपने गोल किस तरह से पूरे करूँगा, अगर मुझे अच्छी जॉब फ्यूचर ना में ना मिली तो मेरी इस डिग्री का क्या फ़ायदा, अच्छा मैं क्या डिग्री परस्यू करूँ जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में एक अदद अच्छी जॉब मिले, और भी इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आपके मेरे बल्कि हम सभी के माइंड में आते हैं और हम दिन रात यही सोचते रहते हैं। सो इससे होता यह है कि हम आज की खुशी और आज का सुकून अपने आने वाले कल की वजह से कहीं ना कहीं खो देते हैं। लेकिन सोचिए तो सही, आज तक आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल आई आपको उनसे बाहर निकलने के लिए, जब कल आपको संभलने वाला मौका मिलेगा तब आप संभल भी जाएंगे। सो ओवरथिंकिंग और आने वाले कल का बोझ कभी भी अपने कंधों पर मत लादिए, आप अपने हिसाब से मेहनत करते रहें और हमेशा डिसीजन इस बेस पर लें कि आपका आज किस तरह से अच्छा होगा। सो अगर आज अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। सो वेल लिसनर्स, ये था हमारा आज का सेकंड कोट। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के दोनों कोट बहुत अच्छे लगे होंगे, और इस सेगमेंट के हवाले से आपका है क्या कहना, क्या आप सोच रहे हैं या फिर आप अगर इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं सो डू लेट मी नो। साथ ही साथ आप अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा फर्स्ट कोट था वो इस चीज़ के हवाले से था। क्या आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और आप अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर सकते हैं। और दूसरा कोट इस चीज़ के हवाले से था कि कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने आज को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। सो वेल लिसनर्स, इनको मज़ीद कंटिन्यू करती लेकिन फ़िलहाल शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हमें आगे बढ़ना होगा, जाना होगा इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। फ़िलहाल के लिए चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें एंड स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 97 2 ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से सभी लिसनर्स को खुशामदीद। डीवा डायलॉग में आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो डीवा डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात की थोड़ी सी मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, साथ ही साथ कम्युनिकेशन की। सो अब जरा बात करते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, यानी कि अब थोड़ी मोटिवेशन तो हो गई है, अब जरा बात करते हैं सभी डीवा से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक की जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई नो फीमेल्स का ये फेवरेट टॉपिक होता है। और जब भी कभी फीमेल से बात की जाती है अबाउट स्किन केयर, अबाउट मेकअप, सो वो हमेशा यही कहती हैं कि उनके बस कहने को बहुत कुछ होता है, और डिटेल में वो डिस्कस करती रहती हैं इस तरह की चीज़ें, और कुछ इसी तरह से बातें करते करते करते वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही बहुत अच्छे से कुछ DIY मास्क, जो कि टोटली हैं ऑर्गेनिक, और साथ ही साथ जब आप उनको ट्राई करेंगे देन आपको पता चलेगा कि उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। सो इस बदलते हुए मौसम के साथ जहां हर चीज तब्दील हो रही है, सो हमारी स्किन को भी जरूरत होती है डिफरेंट तरह की स्किन केयर की, यानी कि हमें जरूरत इस चीज की होती है कि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है वैसे वैसे हम अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स को भी चेंज करें। सो आज मैं लेकर आई हूँ दो ऐसे DIY मास्क जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करेंगे, और साथ ही साथ अगर कभी ऐसा होता है ना कि डेली बेसिस पर सन एक्सपोजर की वजह से स्किन बहुत ही ज्यादा डल और टैन हो जाती है, सो उसे भी काफी हद तक कम करेंगे।

लिसनर्स आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूंगी इंग्रेडिएंट्स, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक सुनना है, तो उसको शो में शामिल किया जा सकता है। पर फिलहाल के लिए अभी जो मैं ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरा फेवरेट ट्रैक है। और अगर बात की जाए इंग्लिश गानों की, सो ये गाना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। आई मीन दुनिया में बहुत सारे गाने होंगे, लेकिन नो वन कैन रिप्लेस दिस। सो वेल लिसनर्स, ये तो आप ही बता सकते हैं कि ये गाना जितना मुझे पसंद है, क्या आपको भी उतना पसंद आता है या नहीं। उसके लिए आपको सुनना होगा ये ट्रैक। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक, और ट्रैक के उस पार फिर बात करेंगे थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स के बारे में।

सो बात करते हैं फर्स्ट DIY मास्क की. सो इट्स कॉल्ड टर्मेरिक एंड योगर्ट मास्क. सो बेसिकली ये मास्क किस चीज़ के लिए वर्क करता है, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट अफेक्ट देता है, और अगर समहाउ सूरज की वजह से या फिर बहुत ही ज़्यादा बाहर आने जाने की वजह से अगर आपकी स्किन टैन हो चुकी है तो उसे भी काफ़ी हद तक कम करता है. सो ये मास्क स्किन टोन को इवन आउट करेगा, साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, क्योंकि योगर्ट स्किन को सॉफ्टली एक्सफोलिएट करता है, और साथ ही साथ जो टर्मेरिक है उसमें ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इन्ग्रीडियंट्स, और साथ ही साथ ये भी बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको करना है. सो इस मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स. सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज 1 टेबलस्पून प्लेन दही, साथ ही साथ 1 टीस्पून हनी, और साथ ही साथ एक पिंच आपको चाहिए हल्दी की. ये 3 ही इंग्रेडिएंट है जिनको आपने यूज करके ये मास्क रेडी करना है. अब किस तरह से इसे अप्लाई करना है उसका तरीका भी बता देती हूँ. सो इन सभी चीज़ों को आपने ले लेना है एक बाउल में, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद आपने बना लेना है एक स्मूथ सा बैटर. सो आपने इसे फेस पर लगाना है, और लगाकर आपने छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए. और 10 से 15 मिनट के लिए ये काफ़ी हद तक खुद से ड्राई हो जाएगा. सो आप इसको आराम से पानी से धो लें, एंड देन आप फील करेंगे कि पहले ही यूज़ में स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखेगी, और जो डलनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी. सो आपने यूज़ करना है इस मास्क को वीक में 2 से 3 मरतबा, एंड यू विल सी के योर स्किन इज बिकम सो ब्यूटिफुल. अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा मास्क सूटेबल होता है और ऑयली स्किन के लिए. सो दिस मास्क इज़ सूटेबल फॉर बोथ स्किन टाइप. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है देन तभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं. सो अब जरा आगे बढ़ते हैं आज के सेकेंड DIY मास्क की जानिब. सो इट्स कॉल्ड हनी एंड ओट्स मास्क. सो ये मास्क बेसिकली आपकी जो ड्राई और डल और सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहता है. तो जितने भी हमारी लिसनर्स हैं, हमारी डीवाज हैं जिनकी स्किन टाइप ड्राई है, तो ये मास्क आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और बेस्ट है, क्योंकि ओट स्किन को सूथ करने में बहुत हेल्प करता है, और हनी जो है वो मॉइस्चर को लॉक करके रखता है. सो अब आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स. सो इस मास्क को बनाने के लिए सिंपली आपको चाहिए 2 टेबलस्पून पिसी हुई ओट्स, साथ ही साथ 1 टीस्पून रॉ हनी. बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आप ओट्स हनी इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें. अगर पेस्ट आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, सो आप इसके अंदर थोड़ा सा वार्म मिल्क शामिल कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी रनी हो जाएगी, क्योंकि आपने मास्क रेडी करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कंसिस्टेंसी रनी हो, तभी आप इजीली उसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, और तभी आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. सो अब आपने अप्लाई कुछ इस तरह से करना है कि आपने फेस पर सर्कुलर मोशन में हल्का सा मसाज करते हुए इसे लगाना है. 15 से लेकर 20 मिनट तक लगे रहने देना है, एंड देन फिर उसके बाद ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है. वीक में आप इसको 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं. सो ये ज़्यादा बेटर इसलिए है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ये आपकी स्किन में काफ़ी हद तक मॉइस्चर लेकर आता है. लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको फील होगा कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली लग रही है. सो इसी तरह का हमारे पास एक अदद और भी DIY मास्क है, जो कि बहुत ही अच्छा है और हर तरह की स्किन टाइप के लिए बेस्ट है. लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना शो में कोई गाना शामिल कर दिया जाए, क्योंकि हम काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं और म्यूज़िक भी साथ साथ चलता रहे तो अच्छा लगता है. सो आपको किस तरह का म्यूज़िक पसंद है आप भी मुझे बता सकते हैं. तो फिलहाल के लिए प्ले करती हूँ ये सॉन्ग, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग.

वेल लिसनर्स, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले DIY मास्क की जानिब। सो इस मास्क का नेम है पपाया एंड लेमन मास्क। सो ये आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो कहा जाता है कि पपाया में नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो कि डेड स्किन को रिमूव करते हैं, जबकि लेमन जूस जो है वो स्किन को इंटरनली ब्राइटन अप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अब इसके इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करती हूँ। आपको मालूम तो हो ही गया होगा कि इसमें बेसिक से दो इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, द फर्स्ट इज़ लेमन एंड द सेकेंड इज़ पपीता। सो इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैश पपीता, साथ ही साथ 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमने मैश पपीता यूज़ करना है। सो उसके पल्प की वजह से एक अच्छा सा थिक सा मिक्सचर आराम से रेडी हो जाएगा। सो बस आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है, आराम से जेंटली 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर जब ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए तो आपने इसे कूल वाटर से वॉश कर लेना है। सो इस मास्क की सबसे बेस्ट बात यह है कि इससे कोई भी स्किन टाइप के लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आपकी स्किन ड्राई है या कॉम्बिनेशन, सो ये तीनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, ग्लोइंग हो, तो सबसे पहले आप इन ब्यूटी टिप्स को तो साथ ही साथ अप्लाई करें, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि आजकल इतनी बिजी रूटीन होती है तो हम एक मरतबा अप्लाई करते हैं और फिर भूल जाते हैं और इसी तरह से फिर बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखे अंदर से बाहर से, सो उसके लिए ज़रूरत है कि आप जितना इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आप की ड्रेसिंग कैसी है, आप किस तरह के दिख रहे हैं, मेकअप अच्छा हो, एक्सपेंसिव हो, तो साथ ही साथ आपको अपनी स्किन की भी बहुत ही ज़्यादा लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है, तभी आप अंदर से भी और बाहर से भी खूबसूरत दिखेंगे और प्रीटी लगेंगे। सो लिसनर्स, ये थे कुछ ब्यूटी टिप्स जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सभी लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। वैसे लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इन ब्यूटी टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन तो सभी की एक जैसी होती है और आई थिंक सो कि आपको भी ज़रूरत होती है स्किन केयर की, क्योंकि आप लड़कियों की नस्बत ज़्यादा घर से बाहर जाते हैं, सन एक्सपोजर भी आपका ज़्यादा होता है। सो आपको भी स्किन केयर करनी चाहिए, सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए और इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि आप धूप को अवॉइड करें। वेल लिसनर्स, लाजमी ट्राई कीजिएगा इन ब्यूटी टिप्स को और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको ये DIY मास्क कैसे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के मजीद अच्छे अच्छे ब्यूटी टिप्स आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ, सो उसके लिए 01157100971 इसके थ्रू लाजमी बताइएगा। फिल वक्त के लिए शो में शामिल करते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक जो कि आपके इस मूड को कर देगा चेंज। सो सुनने के बाद बताइएगा कि यह ट्रैक आपको कैसा लगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का द स्पाइस किचन सेगमेंट, जहां पर मैं लेकर आई हूं आपके लिए आज भी एक बहुत ही अच्छी सी डिफरेंट सी फ्यूजनल सी रेसिपी। सो उसके लिए पहले सुनते हैं ये ट्रैक।

वेल लिसनर्स, इस वक्त वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से

0: 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आप सभी की मेजबान ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो। और तकरीबन सुनते सुनते हो चुका है आपको और मुझे साथ में एक घंटा से भी ज़्यादा। सो बस अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया है हमारे इस सफ़र को ख़त्म होने में, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बताती चलती हूँ 01157100971 ये है मेरा और आपका रबते का नंबर। यानी इस नंबर के ज़रिए से आप मुझसे वो सभी बातें कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं किसी से, या फिर आप मुझे अपने दिल का हाल सुना सकते हैं। सो अगर है आपको कोई भी उलझन या फिर है आप किसी भी कश्मकश का शिकार, सो डू लेट मी नो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक बहुत ही अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस दूँ। सो ये स्टार्ट करते हैं आज का द स्माइल्स किचन, और हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ अपनी सभी डिवाइस के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही अलग और बहुत ही मुनफरिद सी रेसिपी। सो हम बहुत ही ज़्यादा एशियन कॉन्टिनेंटल और हर तरह की रेसिपीज ट्राई करते हैं, सो आज ट्राई करते हैं एक ऑथेंटिक इटालियन रेसिपी। सो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी कार्बोनारा। सो ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर और आसान सी पास्ता रेसिपी है जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी कोई क्रीम यूज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी होती है, और ये इटली के लोकल्स में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी इसको ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिसनर्स में से भी बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हों जो कि इटली से बिलोंग करते हों। सो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। सो द लिसनर्स, बिना टाइम वेस्ट किए आपसे शेयर करती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से अपने काम का छोड़ दीजिए और कॉपी, डायरी या फिर नोटबुक रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी के मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स, और अगर आपने जल्दी से नोट नहीं किए तो आप मिस कर देंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। सो जब तक आप अपनी नोटबुक या डायरी रेडी करते हैं, तब तक हम सुनते हैं एक अदद अच्छा सा ट्रैक। सो इस ट्रैक के उस पार कंटिन्यू करते हैं इस रेसिपी को।

मुझे लिसनर्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्पेगेटी 200 ग्राम्स, साथ ही साथ हमें चाहिए अंडे 1 से 2 अदद, चीज़ 50 ग्राम्स, साथ ही साथ आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या फिर चैटर चीज़, कोई भी हो, इट्स टोटली अप टू यू एंड इट्स टोटली योर चॉइस। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है मीट 100 ग्राम चिकन क्यूब्स, जिसको आप स्मोक कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर कि आप चिकन ही यूज़ करें, क्योंकि चिकन इजीली कुक हो जाता है, प्लस मेजॉरिटी को चिकन पसंद होता है, सो इस वजह से। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साथ ही साथ ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। सो ये कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि हम सभी के घरों में अंडे मौजूद होते हैं, चीज़ भी मौजूद होती है, साथ ही साथ स्पाइसेस इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इटालियन रेसिपीज में स्पाइसेस का लेवल हमेशा से कम होता है, सो हम जस्ट ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ नमक। सो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स, आई होप आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपसे कुछ मिस हो गया हो या कुछ समझ आने में दिक्कत रह गई हो, तो उसके लिए आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको बता दूंगी। सो ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके फुल प्रोसीजर की जानिब। सो सबसे पहले एक बड़े पतीले में आपने पानी को कर लेना है अच्छे से गर्म, फिर उसमें ढेर सारा नमक शामिल कर देना है। जब पानी उबलने लगे तो वक्त आ चुका है कि आप इसके अंदर ऐड कर दें स्पेगेटी।

सो आपने क्या करना है कि पास्ता को 100% कुक करने के बजाय बिल्कुल 90% बॉईल करना है, ताकि वो बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर कुक ना हो और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे. सो आपने बस इसको 90% तक कुक करना है. कुक करने के बाद बस चूल्हे को कर देना है बंद. इसके पानी को अलग से साइड पर रख देना है. साथ ही साथ आपने पास्ता को कर ठंडा होने के लिए रख देना है. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की जानिब, यानी कि जैसा कि हमारे पास्ता का नेम है स्पेगेटी कार्बोनारा. सो अब हम बनाएंगे कार्बोनारा सॉस. सो जब तक पास्ता बॉईल हो रहा हो तब तक आपने एक बाउल में एक पूरा अंडा शामिल कर देना है, साथ ही साथ दो अंडों की जर्दी, पिसी हुई चीज़ और काली मिर्च, साथ ही साथ फोक की मदद से इन सबको आपने अच्छे से फेंट लेना है. ये एक बहुत ही अच्छा सा थिक सा आपका पेस्ट बन जाएगा. बस अब आपने इस पेस्ट को बना के साइड पे रख देना है और आगे बढ़ना है अपने स्टेप नंबर 3 की जानिब. सो स्टेप नंबर 3 में हम एक पैन लेंगे जिसमें थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल गर्म कर लेंगे. उसी में हम ऐड करेंगे अपना मीट और फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो. 3 से लेकर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जब तक वो बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना दिखे. फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसे निकाल कर साइड पे रख लेंगे. सो अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग अप करने की. अब हम क्या करेंगे कि उसी पैन को चूल्हे पे रखेंगे जिसमें हमने अपना मीट कुक कर लिया था, देन उसमें ऐड करेंगे पास्ता. पास्ता शामिल करने के बाद सो हम पास्ता को अच्छी तरह से मीट के ऑयल में गरम कर लेंगे. अब इसमें हम थोड़ा सा बचा हुआ पास्ता गरम पानी ऐड कर देंगे.

सो तीन से चार दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वही अंडे और चीज़ का मिक्सचर। ऊपर से बहुत तेज़ चम्मच से इसको आराम आराम से हिलाएंगे पास्ता की गर्मी की वजह से चीज़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से कुक हो जाएगी और इस तरह से आपका सिल्की क्रीमी और शाइनी सॉस रेडी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी सॉस बहुत ही ज़्यादा थिक है तो आप इसमें पास्ता का जो पानी बचा हुआ था आप वो शामिल कर सकते हैं ताकि आपकी सॉस थोड़ी सी थिन हो जाए, रनी हो जाए। सो टड़ा, इसी तरह से आपकी ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी हो गई तैयार, बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा फ्यूजनल। तो आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, निकाल लें आप इसको अच्छे से एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद आप चाहें तो, अगर आप चीज़ लवर हैं तो मज़ीद इसके ऊपर से चीज़ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो काले मिर्च छिड़क कर आप इसे गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। वेल लिसनर्स, डू लेट मी नो आपको आज की स्पाइस किचन की ये रेसिपी कैसी लगी और क्या आप इस रेसिपी को आज ट्राई करेंगे या नहीं। इसके लिए 01157100971 ये है हमारे रबते का नंबर, सो आप मुझे बता सकते हैं। वेल अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज मैं लेकर आऊँ आपके लिए तो मैं ज़रूर ले कर आऊँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे आगाह करना होगा कि आप क्या सीखना चाहते हैं या आपको कौन सी डिश की रेसिपी चाहिए। आज की रेसिपी के हवाले से वैसे आपका क्या कहना है वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो डिवर डायलॉग में हमारी हमेशा से यही कोशिश होती है कि हम द स्पाइस किचन में उन्हीं रेसिपीज को डिस्कस करें जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी हो प्लस बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो, यानी कि उनमें कोई भी डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स ना हो, ना ही कुकिंग मेथड डिफिकल्ट हो, ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो और आप आराम से आसानी से उसको बना सकें। वेल ये तो हो गया हमारा आज का द स्पाइस किचन। अब से बात कर लेते हैं थोड़े से इंटरटेनमेंट सेक्शन की जानिब। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ यूके में 13 जुलाई को रिलीज हुई थी द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं जानते, सो ये मार्वल सीरीज की ही एक मूवी है और जैसा कि अब मूवी को हो चुका है तकरीबन एक वीक कंप्लीट, सो जरा बॉक्स ऑफिस में इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं।

सो बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने अपने रिलीज के पहले ही हफ्ते में ग्लोबल ऑफिस पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा माइलस्टोन क्रॉस कर लिए हैं, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के बाद दुनिया की सेकेंड फास्टेस्ट फिल्म बन चुकी है जिसने इतनी जल्दी $1 मिलियन कमाए हैं।

सो बेसिकली इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर क्रेजी अबाउट स्पाइडरमैन. वैसे भी मैंने जितना देखा तो बहुत ही ज़्यादा इस पर मुझे लोगों का भी क्रेज देखने को मिला. बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि मूवी बहुत अच्छी है, अमेजिंग है, लेकिन मूवी काफ़ी ज़्यादा है इमोशनल. सो अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपको साथ में रखना होगा टिशू का एक अदद पैक. किसी भी किस्म का स्पॉइलर नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स खुद जाकर देखें इस मूवी को और आकर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी. आपको मार्वल सीरीज की बाकी मूवीज कैसी लगी और इस मूवी से रिलेटेड आपका है क्या ख्याल. वैसे मैंने आपको बताया था जैसे कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्पाइडरमैन और मैंने इसकी एक भी मूवी नहीं देखी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि इसकी इस कदर हाइप है तो मैंने सोचा कि आई थिंक वी शुड ट्राई दिस. सो मैंने स्टार्ट की स्पाइडरमैन सीरीज. सो द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड मूवी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि रियलिटी बेस्ड नहीं लग रही थी.

हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको रियलिटी बेस्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं. वेल वाकई ओवरऑल स्टोरी प्लॉट बहुत अच्छा था, और द फर्स्ट स्पाइडरमैन वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. तो फिलहाल इतने ज़्यादा हाइप को देखते हुए मैंने सोचा कि बाकी सारी मूवीज़ कंप्लीट कर लूँ, फिर ही जाकर सिनेमा में द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखूँ. तो अगर आपने देखी हैं फर्स्ट मूवी से लेकर अब तक रिलीज़ होने वाली सभी मूवीज़, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपना फीडबैक और बता सकते हैं कि आपको ये फ्रेंचाइज़ कैसी लगी. और अगर आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली है तो भी मुझे बता सकते हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने कभी भी इतना लोगों में क्रेज़ नहीं देखा किसी भी मूवी को लेकर जितना इस बार मैंने लोगों में क्रेज़ देखा है. वेल ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा. वेल इस तरह के मौके बहुत ही कम मिलते हैं, सो मैं तो आप सभी से भी यही कहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान वगैरह बनाएं और मिलजुल कर मूवी देखने जाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको अपनों से मिलने का एक अदद मौका मिल जाएगा, साथ ही साथ मूवी भी इंजॉय हो जाएगी. सो मैंने भी कुछ इसी तरह से प्लान किया है कि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों मिलकर जाएंगे, और मतलब हमारे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है हम सब मिलकर जाएंगे और इस मूवी को देखेंगे. इससे ये होगा कि जो हम काफ़ी अर्से से नहीं मिले हम भी मिल लेंगे, मूवी भी देख लेंगे. बाकी मूवी देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये मूवी कैसी लगी और ओवरऑल सिचुएशन.

वेल इसी के साथ ही दीवा डायलॉग का ये सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और बहुत मजा आया आप सबसे गपशप करके, आपको अपनी स्टोरी सुनाकर और साथ ही साथ कुछ आप की स्टोरीज को सुनकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक हमसे शेयर करते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की और अपने शो को मजीद इम्प्रूव करने की। सो आज के शो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। जाते जाते एक बार फिर से आज का कोट रिपीट कर देती हूँ कि हमारे आज के कोट ये कहते हैं कि खुद की विल पावर पर हमेशा यकीन रखना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए, एंड सेकेंडली कि कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट तरह की सिचुएशन तो जिंदगी में आती रहती है, लेकिन असल इंसान तो वही होता है जो अपने आज में जीता है, ना कि अपने कल की फिक्र में रहता है। सो इसी खूबसूरत सी अच्छी सी बात के साथ ही शो को करते हैं यहीं पर इख्तिताम पज़ीर। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में हमें याद रखना है। और अब मुझे अपनी होस्ट आर जे जैनब फातिमा को दें इजाज़त। जाते जाते आपके लिए एक अच्छा सा गाना प्ले करती चलती हूँ। आप मुझे बताइए आपको किस तरह का गाना सुनना है, तो कुछ ऐसा ही सॉन्ग प्ले कर देती हूँ आप सबके लिए। सो जी लिसनर्स, मुझे मिल चुका है ये गाना, तो ये मैं प्ले करने जा रही हूँ। जाते जाते आप इस गाने को इंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

अभी जो है प्रोग्राम में मैं अपनी तरफ से एक ट्रैक शामिल कर देती हूँ, क्योंकि हमेशा जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ अपनी मर्ज़ी से किया जाता है, यानी कि अपने पसंद के ट्रैक से किया जाता है, क्योंकि जब तक आप मुझे बताते नहीं अपने मनपसंद ट्रैक तब तक आप मेरे पसंदीदा ट्रैक सुनते हैं। लेकिन वो वापसी पे आकर आपकी फरमाइशों को भी पूरा करेंगे। मे भी शायद इसके बाद मेरे और आपके दरमियान अगर कमर्शियल ब्रेक हाल हो गई तो फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं स्ट्रैक के उस पार।

सवाल अगर कोई टॉपिक प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहते हैं तो वो भी मुझे लाजमी बता दीजिएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सोनिए नी सुन के तेरे लारियां नू।
1: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ एक्सेलसन।

0: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी सवातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलराज की। सुरसी के साथ साथ एक बार फिर से वेलकम करते हैं उन नई समातों को जिन्होंने आज और भी 97.1 FM को ट्यून किया है। प्रोग्राम में शामिल होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। 01157100971 इस नंबर के थ्रू आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। और साथ ही में जो है ना, वो हम कमर्शियल ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमने सोचा था कि कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर चांदी जी की फरमाइश को भी पूरा करेंगे। खैर, उससे पहले जो है ना, एक छोटा सा मैसेज जो है प्रोग्राम में शामिल करवा देते हैं, फिर इसके हवाले से डिस्कस जो है वो हम वापसी पे आके कर लेंगे। बड़ी प्यारी बात है कि जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, फिर वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। अब ये अल्फाज तो काफ़ी चंद सादा से हैं, लेकिन अगर इन पर डिस्कस की जाए तो बहुत सी बातें मिलेंगी। क्योंकि जब लोग आपसे मुकाबला नहीं कर पाते ना, तो वो आपकी नफरत पर उतरते हैं। कहते हैं ना, जब कोई बराबरी नहीं कर सकता तो वो मुहालफत पर उतर आता है। जब किसी दूसरे शख्स को लगे कि दूसरे शख्स को ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो थोड़ी सी जैसे जाना इंसान में आ जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले दूसरों की खुशियों को आगे रखें, ना कि अपनी खुशियों को। खैर, इसके हवाले से जो है डिस्कस हम वापसी पे आगे करेंगे। अभी जो मेरे पास एक फरमाइश है प्रोग्राम में, चांदी जी की स्पेशली फरमाइश आई है इस ट्रैक को शामिल करने की, सो हम इसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। बोल, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस छोटे से खूबसूरत से ट्रैक के उस पार।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदेद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडी फॉर 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज, आप सुन रहे हैं सलराज की। सवाल मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती है। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए और प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करवाया था उसके हवाले से डिस्कस कर ली जाए थोड़ी सी।
1: होने से तेरे परेशान है, मेरा सब कुछ तुझे पता है, क्या है जो तुझसे छुपा है, ना खफा है ना जुदा है, अब आ जाके जिंदगी जवां है।
0: बात कुछ इस तरह से थी कि जब लोग आपका मुकाबला नहीं करवाते तो आप से नफरत करने लग जाते हैं, जब के किसी को लगे कि दूसरा शख्स उससे ज़्यादा कामयाब हो रहा है तो इंसान जो है ना वो जेल से ही पुतरा जाता है, थोड़ी सी उसमें हसद आ जाती है। कुछ लोग दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझने लग जाते हैं और ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नसीब की चीज़ जो है वो मिलनी ही मिलनी है, अगर नसीब में होगा तो हाथ से जाकर भी वापस आ जाएगा। जो लोग हर वक्त खुद को दूसरों के साथ अपना मुआवजा करते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं, वो फिर खुद से नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अपना मुआवजा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर इस टाइम पे आप खड़े हैं पता नहीं वहाँ पर कोई होगा भी या नहीं होगा, या कोई सोचता होगा कि काश उस मुकाम पर मैं भी हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की ज़ात ने आपको जिस मुकाम पर रखा हुआ है, जिस मुकाम पर उसने आपको जगह दी हुई है, लोग उस चीज़ को भी तरसते होंगे। क्या आपके साथ कभी, मुझे बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कामयाबी के बाद लोगों का रवैया बदल गया हो या हसद और नफरत जो है वो उसमें फ़र्क आया हो? अमूमन जो है ना इस तरह से हो जाता है कि जब आप उस तरह से मतलब फाइनेंशली अच्छे नहीं होते तो आपके साथ कोई चलता नहीं है, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप फाइनेंशली बहुत अच्छे हो जाते हैं तो जब आप अच्छे हो जाते हैं फाइनेंशली तो तब लोगों का रवैया कैसा हो जाता है आपके साथ, मतलब फिर वो सलाम दुआ वो बढ़ जाती है, वही कहते हैं ना कि पैसे की इज्जत की जाती है, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है या नहीं? और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कामयाब होने के बाद जो है उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, और मेरे ख्याल से वो नहीं आना चाहिए। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि रब की ज़ात जिसको भी जिस चीज़ से नवाजे जो है ना उसके बाद इंसान में एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसके बंदों का वसीला बन सकूँ, और बेशक जो है ना अच्छी सोचों पर ही साबर, और अच्छी सोच जो है ना वो आपको अच्छी तरफ लेके भी जाती है, कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोच के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपके साथ आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी, क्योंकि जो दरवाज़ा आपके लिए उस लोगों ने बंद कर दिया है वो आपके लिए दोबारा नहीं खोल सकता, तो जो दरवाज़ा आपके लिए रब ने खोला है ना उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हर इंसान को आपकी कामयाबी से खुशी नहीं होती, ऐसा होता है अमूमन जो है, मैंने ये चीज़ें नोट किया कि हर इंसान को हमारी कामयाबी से खुशी नहीं होती, सिर्फ घर वाले होंगे या फिर कुछ रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव जो आपके साथ बहुत अटैच होंगे या जो आपकी जो प्योर होंगे, जो जिनको आपकी खुशी से मतलब होगा।
1: कितना सबर था।
0: कुछ लोग आपकी मोहब्बत नहीं देखते, सिर्फ आपकी कामयाबी देखते हैं, राइट, ये भी होता है। और जब इंसान के पास पैसा आ जाए ना तो फिर वाहवाह होती है, और मेरी अक्सर ऐसी बहस हुई थी लास्ट टाइम, मुझे किसी ने कहा था कि पैसा सब कुछ होता है, और मैंने कहा था पैसा सब कुछ नहीं होता, और मुझे बोलता पैसा सब कुछ नहीं होता बल्कि बहुत कुछ होता है। मैंने इस चीज़ को माना कि हाँ यार पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि पैसे के बगैर जो है आप कहीं पे सरवाइव नहीं कर पाते, पैसे के बगैर आपकी इज्जत नहीं की जाती। लेकिन वो इंसान जो जिसको पता हो कि नहीं यार पैसा सिर्फ वक्ती है, आर्जी है, हमने उस इंसान की इज्जत करनी है, उसके साथ अच्छे से चलना है, वो इंसान जिंदगी में दुनिया में बहुत कम रह चुके हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स आपके पास है ना तो उसको संभाल के रखें, ना कि उसको दूसरों की बातों में आकर खोने की कोशिश कर दें। हम अक्सर जो है ना अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता, अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम अपने साथ कर क्या रहे हैं। तो जहाँ हम अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं ना वहाँ हम दूसरों के बारे में भी अच्छा सोच सकते हैं, ना कि अपने बारे में अच्छा सोच के दूसरों के बारे में बुरा सोचना, तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब इंसान अपनी तवानाई جو ہے نا جواب دینے میں نہیں بلکہ مزید بہتر بننے میں لگا دیتا ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے میرے خیال میں ہر انسان کو. تجھے پہ سب میرا, ابھی کسی کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی, شروع شروع میں نہیں آتی, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان کو خود بہت جو ہے نا عقل آتی ہے, خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ غلطی یہاں پر ہو گئی تھی, تو اس ٹائم پہ اگر نہیں کرتا تو شاید یہ چیز نہ ہوتی. پیار کی اتنی منزل ہے. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ نفرت کرنے والا انسان جو ہے نا حسد کرنے والا, وہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے, جبکہ کامیاب لوگ اپنے مقصد پر جو ہے نا توجہ رکھتے ہیں. سو اگر کسی کو اچھے رستے پہ چلتا دیکھ رہے ہیں, اگر کسی کو ایسے مقام پہ جاتا دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگے کہ وہاں پر آپ کو بھی ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں آپ کو اسے حسد نہیں کرنی چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان آپ سے حسد یا نفرت کرتا ہے نا, تو اس کا بہترین جواب بحث نہیں بلکہ اپنا اچھا کردار, مسلسل محنت اور کامیابی ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے مقصد کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں کی طرف جاتے ہیں نا, تو پھر آپ اس طرح سے اس چیز پر نہیں جا سکتے, کیونکہ بلند درخت پر ہی جو ہے نا سب سے زیادہ پتھر مارے جاتے ہیں, پتھر پھینکے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا درخت, ایک پہلے بیج بوتے ہیں, پھر بیج بونے کے بعد اس میں سے ایک درخت بنتا ہے, اور درخت کے بعد جو ہے اس پہ پھل لگتے ہیں, اور پھر لوگ اسی پھل کو پتھر مار مار کے توڑتے ہیں کھانے کے لیے. اچھی چیز جو ہے نا ہمیشہ جھک کے رہتی ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے میرے پاس ایک چھوٹے سے چائے کی فرمائش موجود ہے, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو پروگرام میں شامل کر دیتی ہوں. سو باقی گفتگو جو ہے وہ واپسی بھی آگے کر لیتے ہیں, ابھی تک کے لیے ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا, ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو.

0: को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनतरी समातों को रेडियो वजन 87.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलोराज की। सोलो जी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है अब वक्त भी काफ़ी कम रह चुका है। मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश थी, ट्रैक्स की फरमाइश काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा धोनी को ही प्ले किया जाए। सवाल अभी जो मेरे पास ट्रैक की फरमाइश मौजूद है उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। सो वेल स्टे ट्यून फॉर 87.1 एफएम एंड ऐप। अभी तक के लिए जितना टाइम होगा आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे, फिर उसके उस पार जाएंगे। आपसे इजाज़त, अभी तक के लिए साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाज को रेडियो 107.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। वालो जी के साथ साथ प्रोग्राम में कुछ ट्रैक शामिल किया और अब जो है वो प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, यानी कि अब टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो मुझे अब आपसे इजाज़त चाहिए होगी। मुझे दीजिए इजाज़त कल तक के लिए, अपना अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोग का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई बातों के साथ, नए जज्बात के साथ और नई कहानियों के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

वेलकम बैक एक बार फिर आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट। उम्मीद है कि आपको खूबसूरत नगमा पसंद आया होगा। मौसीकी का अपना ही एक जादू होता है, ये दिल को भी सुकून देता है और यादों को भी कई मरतबा ताज़ा कर देता है। अगर आप भी अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो अभी हमें मैसेज करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। मैसेज करने के लिए हमें आप डायल करें अपने मोबाइल फोन पे 0115-7100-971, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए और शहर का नाम लिखिए, फिर स्पेस देकर अपना पैगाम लिखिए और सेंड कर दीजिए। चलिए अब शामिल करते हैं कुछ खूबसूरत पैगामात। पहला पैगाम आया है जहलम से, अहमद की तरफ से। लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम रोज सुनते हैं, आपकी आवाज दिन भर की थकर उतार देती है। मेरी तरफ से अपने तमाम घर वालों और खास तौर पर वालदैन के नाम एक खूबसूरत गाना। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, वालदैन का साया सलामत रखे और आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा फरमाए। पहले अहमद की फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए उसकी फरमाइश पूरी करते हैं, फिर चलते हैं अगले पैगाम की तरफ। सुनते रहिए फजा 97.1 एफएम।

दोस्तों, आज की मालूमाती बातें भी सुनते जाइए। क्या आप जानते हैं कि मुस्कुराना सिर्फ दूसरों को खुश नहीं करता बल्कि आपकी अपनी सेहत पर भी मुस्बत असर डालता है। तहकीक के मुताबिक मुस्कुराने से जहनी दबाव कम होता है, दिल की धड़कन बेहतर होती है और इंसान खुद को ज्यादा से ज्यादा पुरसकून महसूस करता है। तो आज एक छोटा सा फैसला कर जी, हर दिन कम अज कम एक शख्स को मुस्कुराने की वजह जरूर दीजिए। और अब एक खूबसूरत शेर मुलायजा कीजिए कि चराग खुद नहीं चलते जलाए जाते हैं, मोहब्बतें खुद नहीं मिलती निभाई जाती हैं, दिलों को जोड़ने वाले ही असल इंसान होते हैं, वरना दुनिया में सब रास्ते जुदा जुदा होते हैं।

0: चले आए। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
1: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
0: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
3: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
2: पॉप,
4: आशिका तू फोड़ मुखड़ल कौन ले? सजना ने भूए कि चिकता ले।
2: फिल्मी गाने।

दोस्तों वक्त हो गया हमारे प्रोग्राम के एक दिलचस्प सेगमेंट का, पहचानिए आवाज। इस सेगमेंट में हम आपको एक मशहूर शख्सियत की आवाज है, उनके एक मुख्तसर सा जुमला सुनाएंगे और आपने बताना है ये आवाज किसकी है। तो आइए तवज्जो से सुनते हैं, पांच से सात सेकंड के लिए मारूफ शख्सियत का ये जुमला चलाया जाएगा।

0: एक छोटा सा शेर पढ़ दें जो मैं लिख के उनको देना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी तकरीर खत्म कर दी है, तो अगर इजाजत दे तो।
1: हाँ जी, बस इतना सा जुमला था कि अब आपने बताना है, जल्दी से अपने जवाब भेजिए, देखते हैं कि हमारे सामीन में सबसे सही जवाब कौन देता है और सबसे पहले जवाब कौन देता है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि फजा 97.1 FM आपका अपना रेडियो है। इस सॉन्ग के बाद हम आपके पैगामात और आपके जवाबात शामिल करेंगे। जिन दोस्तों का जवाब सही होगा उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनका नाम रेडियो पे ऑन एयर करेंगे।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: टर्न इट अप रेडियो फाजा 97.1 FM।

एक खूबसूरत नगमा आपने सुना रेडियो फतह एफएम 97.1 पर। एक बार फिर मैं आपका मेजबान मुजाफा हैदर आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी अपने कामों में मसरूफ होंगे, सफर में होंगे, दफ्तर में होंगे या घर में अपने अहल खाना के साथ या शायद चाय का कप हाथ में लिए हमारी आवाज़ सुने होंगे। आपकी मोहब्बत ही हमारी असल ताकत और यही ताल्लुक हमें रोज़ आप तक पहुँचने का हौसला देता है। दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे खूबसूरती, बड़ी खूबसूरती है कि हर नई सुबह इंसान को एक नया मौका देती है। कल अगर कोई गलती हो, कोई फैसला दुरुस्त ना हो सका, कोई ख्वाब अधूरा रह गया, अगर किसी बात पे दिल टूट गया तो उसका मतलब ये हर किसी ने कि कहानी ख़त्म होगी। ज़िंदगी का हुस्न ही यही है कि हर तुलू आफ्ताब के साथ अल्लाह ताला हमें एक नया सफ़ा अता फरमाते हैं जिस पर हम अपनी किस्मत को, मेहनत को, इखलास को और अच्छे किरदार से दोबारा लिख सकते हैं। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नेमतें दिखाई नहीं देती। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पर चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों से अपनी प्यारियों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जाने आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हैं। इंसान की फितरत है कि जो इसके पास है उसकी कदर कम करता है और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालांकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। चलिए एक म्यूज़िक की तरफ चलते हैं, फिर मिलेंगे एक वक्फे के बाद। सुनते रहिए फ़ज़ा 97.1 FM।

वेलकम बैक। अक्सर हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी नेमतें दिखाई नहीं देती। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आप सेहतमंद हैं, अपने पैरों पे चल सकते हैं, अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, अपने कानों से अपने प्यारों की आवाज़ सुन सकते हैं, तो यकीन जानिए कि आप दुनिया के लाखों लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हैं। इंसान की फितरत है, जो उसके पास है उसकी कदर कम करता है, और जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। हालांकि सुकून ख्वाहिशों के पूरा होने से नहीं बल्कि शुक्र अदा करने से मिलता है। मेरे नौजवान दोस्तों, अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि हालात आपके मुताबिक नहीं, वसाइल कम हैं या रास्ते बंद नजर आते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उनमें से अक्सर ने अपनी कामयाबी का सफर सिफर से शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनाया बल्कि अपनी ताकत बना लिया। वो गिरे भी, नाकाम भी हुए, लोगों ने उन पर तनकीद भी की, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया।

वेलकम बैक। याद रखें कि हमें दूसरों की कामयाबी देखकर हसद करने के बजाय अपनी मेहनत पर तवज्जो देनी चाहिए। हर इंसान का वक्त अलग होता है, हर शख्स का इम्तिहान अलग होता है और हर एक का रिस्क भी अल्लाह ताला ने अलग लिख कर रखा है। इसलिए अपना मुआवजना दोस्तों से करने के बजाय कल के अपने आप से कीजिए। अगर आज आप कल से बेहतर इंसान हैं तो यकीन जानिए आप तरक्की कर रहे हैं। और एक बात जो शायद हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बाज़ औक़ात एक जुमला बरसों के ताल्लुकात ख़त्म कर देता है, जबकि एक अच्छा जुमला अजनबी को भी अपना बना देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी ज़बान से हमेशा खैर की बात निकले, हौसला निकले, मोहब्बत निकले और दुआ निकले। रिमिक्स सॉन्ग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम प्ले करेंगे कुछ और सॉन्ग। सुधरी ये फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07595150669। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

आपू जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715222।

जस्ट म्यूजिक से आपको फायदा हासिल नहीं हो रहा, इसलिए हम आपके लिए सॉन्ग प्ले कर देते हैं। रिमिक्स सॉन्ग है, सुनते रहिए नूरजहां और नसीबो लाल की आवाज में फसा 97.1 FM पे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
8: You are listening 97.1 FM.

कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station
9: that plays
10: foot tapping music.

Once again, welcome back, और आप सुन रहे हैं फजल 97.1 FM and also DAB and program called Drive Zone. जिसमें हम एक गाड़ी पे सवार होते हैं और एक सफ़र को निकलते हैं, जो सफ़र हमारा ख़त्म होता है पूरे 7 बजे. वंस अगेन मैं तमाम सुनने वालों को वेलकम कहना चाहता हूं, और तमाम वो लिसनर्स जो इस वक्त नए शामिल हुए हैं उनको भी वेलकम कहना चाहता हूं, और इस वक्त जो मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं उनको भी वेलकम कहना चाहता हूं, जो वॉक करते हुए या घर में ऑफिस में कहीं पे भी सुन रहे हैं उन सबको वेलकम कहना चाहता हूं.

आज के शो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, और आज का शो स्पेशली फरमाइश के का टॉपिक जो है वो स्पेशली एक दोस्त ने फरमाइश की है कि आप टॉपिक पे बात की जाए, और वो टॉपिक भी मैं थोड़ी देर तक रिवील करूँगा, और वो आप भी सोच रहे होंगे कि वो टॉपिक कौन सा है। चलें, आपके दिमाग में इतना बोझ नहीं डालते और आपके बताता चलूं कि आज का जो शो का टॉपिक है वो मैंने रखा है, स्पेशली रखा है, एक फरमाइश पे रखा है, और वो फरमाइश मेरे दोस्त की थी, और उसने कहा कि आपने जब उस दिन अपने लास्ट शो में टीचर्स के हवाले से बात की, तो आप कोशिश करें कि आज का शो टीचर्स पे रखा जाए। जी बिल्कुल, हम टीचर्स की बात करें तो हमारे जहन में आता है कि टीचर्स वो जो हमारे कॉलेज या स्टूडेंट के टीचर्स होते हैं, मेरी नज़र में वो टीचर्स नहीं हैं। मैं आज बात कर लूँगा वो टीचर जो जिन्होंने आपको ज़िंदगी सिखाई, वो टीचर, हाँ वो टीचर वो भी हो सकते हैं जो आपको कॉलेज या स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो टीचर्स आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो टीचर्स आपके वर्क फेलोज़ भी हो सकते हैं, या वो शख्स जो ज़िंदगी में आपको एक बार मिला और आपको वो आपने एक ऐसा लफ्ज़ या ऐसी बात बता गया जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ उसने मुझे जो सिखाई उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमेशा इंसान को एक छोटी सी एक लम्हात होता है, या एक छोटी सी क्लू होता है, या एक छोटी सी चीज़ होती है जो दूसरा शख्स आपके जहन में वो चीज़ होती है पर आपको पता नहीं होता, बस एक बाजू की ज़रूरत होती है जो आपके साथ चले और आपको वो मंजिल तक पहुँचाए। सतत आपके मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है और आपकी फरमाइशें भी पूरी की जाएंगी, और स्पेशली आज उनकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी जो हर बार मुझे स्पेशल सॉन्ग्स प्ले करने का कहते हैं, या किसी को विश करने का कहते हैं, या एनिवर्सरी का कहते हैं।

तो चलते हैं गाड़ी का भैया आगे थोड़ा सा दौड़ाते हैं और बात करते हैं टीचर्स की हवाले से। दोस्तों टीचर्स, जब भी मैं टीचर्स का नाम लेता हूँ तो आप लिसनर्स को जहन में यही आता होगा कि टीचर वो जो जिसने हमें ज़िंदगी सिखाई या जिसने हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, जबकि आप ये चीज़ सोचते ही नहीं हैं कि आपके सबसे बड़े टीचर या सबसे पहले टीचर जो हैं वो आपके खुद माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए वो सिखाया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया, जिन्होंने आपको बोलना सिखाया। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाई और जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीना सिखाई। और वैसे भी किसी ने कहा था कि अगर किसी ने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया है तो वो आपका उस्ताद है। और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ हर शख्स हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, चाहे वो अच्छा लम्हा हो या बुरा हो, आपको कोई ना कोई किसी ना किसी हर एक लम्हे में कोई ना कोई सबक हासिल ज़रूर होता है, चाहे आप उसमें फ़ेल हों या आप पास हों। बात कर रहा था कि जैसे कि सबसे पहले उस्ताद आपके माँ बाप होते हैं, और जिसमें मेरी नज़र में कि जब अम्मी आपको सिखाती है कि सब्र करना सिखाती है, जिस तरह अगर आप कोई किसी चीज़ पे कोई आप ज़िद कर रहे होते हैं तो हम भी जब छोटे होते हुए किसी चीज़ पे ज़िद करते थे तो अम्मी सब्र सिखाती थी और ये कहती थी कि आप अभी वेट करो, आपके अबू ये चीज़ ले आएँगे। और इस तरह दादा दादी एहतराम सिखाते हैं, और बड़ों का एहतराम किस तरह किया जाता है ये हम अपने बड़ों से सीखते हैं, और जिनके दादा दादी नहीं हैं वो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने भी उनको सिखाया होगा, और वो भी अब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह बड़ों का एहतराम किया जाता है। और ये बात हर एक मुल्क के हर एक बंदे में ये पाई जाती है, और हर एक अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाता है, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को ज़िंदगी जीना सिखाएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसे बंदे जो या ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को छोटे होते हुए ये चीज़ नहीं सिखाते या उनको टाइम नहीं दे पाते, तो जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।

अब मुझे लगता है कि सबसे बढ़कर परदेश भी एक उस्ताद है। जो लोग यूके या किसी भी दूसरे मुल्क रहते हैं वो जानते हैं कि परदेश भी एक उस्ताद है, और वो उसने हमें वक्त की कदर सिखाई है, डिसिप्लिन सिखाया, और अपने पैरों के किस तरह खड़े होना है वो सिखाया, हमें ख्वाब देखना, ख्वाब को हकीकत बनाना सिखाया है, और भी घर वालों के लिए मेहनत और कितनी कीमती होती है ये चीज़ वो सिखाई है। और सबसे बढ़कर घर वालों की जब याद सिखाई है, और मुझे घर वालों की इस वक्त बहुत याद आती है जब हम इस तरह के मूवमेंट फॉलो करते हैं या इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, तो घर वालों की ऑब्वियसली सबको याद आती है, या इस तरह की चीज़ें जब सोचते हैं ऑब्वियसली सबको याद आती है।

और इस तरह मेरे एक लिसनर की बात करूँ तो मुझे उनके मैसेज अभी भी याद है, और मैंने उस दिन भी ऑन एयर किया था। उन्होंने यही कहा था कि जब मैं फर्स्ट जॉब पे गया था तो मेरे मैनेजर ने कहा था कि आप सिर्फ वक्त पर ऑफिस आना आपकी आदत नहीं है, बल्कि आपको दूसरों के एहतराम सिखाता है। दोस्तों, एहतराम भी करना दूसरों का, या एक रिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। रिस्पेक्ट हमेशा आपको अपने बड़ों की ज़रूर करनी चाहिए, और ये रिस्पेक्ट करना सिखाता कौन है? टीचर सिखाता है, और टीचर कौन है? आपके बड़े और आपके माँ बाप स्पेशली, और आपके सीनियर्स भी, ये मैं कह सकता हूँ कि वो भी आपके टीचर्स होते हैं, वो भी आपको मैनर्स सिखाते हैं। लाइक जिस तरह इन भाई को, जो मुझे उनका नाम तो नहीं याद रहा है क्योंकि हमारे शो के दौरान बहुत से रैंडम बंदे आते हैं, बहुत से जाते हैं, और हमें हर एक का नाम याद नहीं रहता। हाँ, जो रेगुलर लिसनर्स हैं, जो रेगुलर हमें होने का एहसास देते हैं, रेगुलरली हमें मैसेजेस करते हैं, उनका नाम याद रह जाता है, और हमें याद आ जाता है कि ये वो फलां शहर से फलां नाम का लिसनर आज भी हमें सुन रहा है, और मुझे पता है कि वो आज भी सुन रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आपको छोटे छोटे जुमले अपने अगर ज़िंदगी में ये अडॉप्ट कर लें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है, और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ है, और कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है कि आपको कामयाब बनाती है। और वैसे भी हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना में एक सक्सेस होती है, और वो मेहनत होती है जो आप दिन रात करते हैं। और मेरी नज़र में ऐसी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट एक इंसान के लिए है कि अगर साहब कहें कि ये तुम नहीं कर सकते और तुम करके दिखाओ, और मैं कहता हूँ कि कामयाबी इतनी खामोशी से करो कि मेहनत आपका मुंह चढ़कर बोले, और ये हर एक बंदा आपको भाषण देता है, पर मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देख चुका हूँ। अच्छा, आप मैसेज भी शामिल करेंगे, और साथ साथ मैसेजेस से पहले मैं आपसे आज के शो का पहला सवाल करना चाहूँगा, और सवाल यह है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा उस्ताद है जिसने आपको किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी जीना सिखाई? और ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका सारा दिन कामकाज में गुजरा होगा, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। और इस वक्त जो मुझे ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपने भी जब घर पहुँचना है तो ज़रूर मुझे बताना है, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान आप कोशिश कीजिए कि कंसिस्टेंसी ऑन ड्राइविंग। ऑप्शन ये है कि आपको ज़िंदगी में जो उस्ताद जो है आपका, वो अम्मी हैं या अब्बू हैं या दादा दादी हैं या दोस्त हैं या कोई उस्ताद है, या वो शख्स जिसने सिर्फ आपके साथ एक बार मुलाकात की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे बहुत से शख्स होते हैं लाइक हमें वो ज़िंदगी में एक बार मिलते हैं, जिस तरह हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमें कोई बंदा मिलता है जो हमें उनसे गपशप होती है, उनका नाम पूछते हैं, अच्छा आप क्या काम करने जा रहे हैं, किस काम को जा रहे हैं, मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मैं रेगुलर जॉब पर जा रहा हूँ, तो वो बातों में कोई ऐसी बात वो कर जाते हैं कुछ ज़िंदगी में हमें याद ज़रूर रहती है। तो ये चीज़ इंसान को, अगर वो चीज़ हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर ले, या उसकी बात ऐसी हो कि वो बंदे को लगे कि ये चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करूँगा, तो ये हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो। अपने होने का एहसास हमें ज़रूर देना है, और अपना जवाब ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और व्हाट्सएप मैसेज जो न्यू लिसनर्स हैं उनको बताता चलूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0115710091। आई रिपीट इट, 0115710091।

बातें साथ साथ होती रहेंगी, साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी एक सीन होना चाहिए, और सीन ऑन है और आप टेंशन ना लें। और आपके लिए एंटरटेनमेंट के भी कुछ प्लेलिस्ट, स्पेशल प्लेलिस्ट हमने तैयार कर रखी है। जो अभी फर्स्ट प्लेलिस्ट है मेरे नज़र में वो है हिंदी वर्सेस पंजाबी नॉन स्टॉप मेशअप, और इसमें सुबह इमरान खान, करण ओजला और इन तीनों की आवाज़ है, और मैं कहता हूँ कि जादू जगाने वाली आवाज़ है। और मैं सोच रहा हूँ कि आप, जब तक आप सोचते हैं कि आपको कौन सा ऐसा उस्ताद है जिसने आपको किताब की जगह ज़िंदगी जीना सिखाई है, उसका जवाब देते हैं, तब तक आप साथ साथ सॉन्ग्स मैं प्ले करता हूँ और उसको भी इंजॉय करें, और अपना जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अपने होने का एहसास दीजिएगा। सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

वंस अगेन वेलकम बैक। और आप सुन रहे थे एक प्यारा सा, अच्छा सा, क्यूट सा हिंदी वर्सेस पंजाबी नॉट सा मेशअप। और मैं आपने तमाम आने वाले न्यू लिसनर्स को 107.1 एफएम की तरफ से वेलकम कहता हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और एक प्यार भरा सलाम मेरे तमाम सुनने वालों के नाम। और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम, जो है हर जगह हर वक्त सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि आज का हमारा टॉपिक था उस्ताद, और उस्ताद वो जो जिन्होंने आपको किताबें नहीं ज़िंदगी सिखाई। और वैसे भी मैंने आपसे सॉन्ग्स से पहले क्वेश्चन भी किया था कि आपने भी हमें बताना है कि आपकी नज़र में आपका उस्ताद कौन है, आपकी अम्मी, आपकी अब्बू, और या आपकी दादी दादा, या आपके दोस्त, या आपके वर्क फेलोज़, या ऐसा कोई शख्स जो आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिला हो मगर आप कहते हैं कि वो मेरा उस्ताद है।

अच्छा बात अम्मी की कर रहा हूँ, बार बार मैं अम्मी को ले आता हूँ तो अम्मी से ही मेरे जहन में एक बात आई है कि अम्मी ने शायद कभी कोई लंबी तकरीर नहीं की। हाँ इसी तरह है, आपको भी लगा होगा कभी आपने सोचा कि अम्मी ने बस, अम्मी जो होती है वो छोटी छोटी चीज़ें बताती हैं, ठीक है, और वालदा जो है वो आपको, वालदा की बात जो होती है वो आपको मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक तरीका बताती है, क्योंकि मेरे हिसाब से आप वालद जो होते हैं वो ज़्यादातर इस तरह होता है कि वो काम काज में मसरूफ़ होते हैं, सिर्फ इतना टाइम ही होता है कि उनके पास, जस्ट जब वो काम से वापस आते हैं तो थोड़ी देर आपके साथ गपशप लगा लेते हैं, आप उनके साथ खेलते हैं और कुछ ना कुछ वो वीकेंड पे घूमने लेकर जाते हैं, पर मेरे हिसाब से जो वालदा से इंट्रैक्शन होती है बंदे की वो वालद की निस्बत ज़्यादा होती है। और कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो वालदैन के जो हमेशा आपको याद रहते हैं, और जिस तरह के जुमले मेरी नज़र में जो जुमले हैं वो हैं, किसी का दिल मत दुखाना, किसी का दिल मत दुखाना हमेशा हर कोई कहता है, और ये एक अहलाकन भी एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, मतलब आपके, आपको जो भी किसी से भी मिलें और जब वो आप उससे मिल के चले जाएं और वो आपको अच्छे अल्फाज में याद करे और अच्छे ही नज़रों में आपको देखे और आपको ये महसूस ना करे कि ये कहाँ से आ गया ये। और हर वालदैन हमेशा अपने बच्चे को सच बोलना सिखाता है, क्योंकि सच ही वो चीज़ है कि आपको उस पर पछतावा नहीं होता, और हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा आपको सच का ही साथ देना चाहिए। और हमारे दरमियान एक चुन्नू मुन्नू सी कमर्शियल ब्रेक आ रही है और उसके बाद आपके मैसेजेस शामिल करेंगे, और तब तक आप और साथ रहिए और सुनते रहिए फजल 97.1 FM विद RJ मौज़म।

0: commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

Once again, welcome back. और आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड ऑल्सो डैब, और जो हर जगह हर वक्त सिर्फ आपके लिए है।

अच्छा हरदीप, हरदीप फ्रॉम इंडिया, और आपने मैसेज किया है और आपने आरजे की तारीफ़ की है, और आरजे की तारीफ़ मेहरबानी जनाब, और मैं आपको पंजाबी में कहूँ और जनाब तुहाडा शुक्रिया, तुसा साडे शो की जीनत बने हो। आपने मैसेज में कहा है कि मेरे वालिद ने हमेशा कहा कि कामयाबी से पहले अच्छा इंसान बनो, आज भी मैं इसी बात पर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अच्छा ही रहूं। जी वैसे तो मैं पंजाबियों का सुने है कि वो अच्छे नाल अच्छे और बुरे नाल बुरे होंगे, तो तुसा अच्छे रहते हो तो बड़ी गल है, तो अच्छा ही रहना चाहिए। कोशिश कराया करो कि अपने जो भी कोई अगर कोई गलत मामला हो भी जाते या किसी नाल कोई चीज़ ऐसी वैसी गल कोई कह भी देता है, तो कोशिश कराया करो तो तुसा अच्छे ही रहा करो। और मैं कहना कि बहुत सारे गलां खामोशी बेहतर है। अच्छा ये नए लिसनर एक शामिल हुए हैं कमल, कमल फ्रॉम नॉटिंगम और नेपाल है इनका होम टाउन। जी बिल्कुल, थैंक यू कमल, और मैं कहता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपना होम टाउन भी साथ बताया कि आप फलां मुल्क का आपका होम टाउन है और आप अभी इस वक्त नॉटिंगम में ही हैं। और आपने भी लिखा है कि मेरे दादा जान हमेशा कहते थे कि गुस्से में कभी फैसला मत करना, आज समझ आया कि वो कितनी बड़ी बात थी। जी बिल्कुल, गुस्सा इंसान को, मैं कहता हूँ कि गुस्से में इंसान ऐसी बहुत सी बातें कह जाता है कि जो बाद में उसको खुद पछतावा होता है कि वो ये बात उसको नहीं करनी चाहिए थी। और हमेशा मैं कहना चाहता हूँ अपने तमाम लिसनर्स को कि जब भी आप गुस्से में हों तो कोशिश किया करें कि उस चीज़ को वाइंड अप किया जाए और उस चीज़ से कंट्रोल अपनी ज़बान पे कंट्रोल किया जाए और अपने मोशंस पे कंट्रोल किया जाए। अगर आपको कोई बंदा कोई बात कह भी देता है तो आप कोशिश करें कि उस पे आप बस हंस कर उसका टाल दें और कोशिश करें कि बातचीत करके उस मामलात को निपटाया जाए। और एक गलत फ़ैसला आपका हो सकता है कि ज़िंदगी का बहुत ही बुरा फ़ैसला साबित हो, और कोशिश किया करें कि अपने फ़ैसलों से पहले हमेशा सोच समझ के फ़ैसला किया करें और अपने फ़ैसलों का हक अपने माइंड को दें, और माइंड जब तक इस काबिल ना हो कि वो फ़ैसला कर सके तो कोशिश करें कि वो फ़ैसला ही ना करें।

अच्छा, एक और मैसेज शामिल करेंगे कि एक अर्जुन फ्रॉम इंडिया, और अर्जुन लिखते हैं कि एक अजनबी ने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की और कहा कि जब मौका मिले तो किसी और की मदद करना, जब मैं आज भी इस बात पर अमल करता हूँ। जी बिल्कुल अर्जुन, आपका थैंक यू स्पेशली फॉर आप कमिंग एंड मैसेजेस। जी बिल्कुल अर्जुन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे इस शो की जीनत बने और आपने अपने होने का एहसास दिया, और आपने जो बात की वो बहुत ही बड़ी बात कर दी। और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर ये सोच रहे होंगे कि एक अजनबी बंदा ऐसी क्या चीज़ करता है जो हमें नहीं पता। हो सकता है कि ये एक लिसनर्स को मिसाल हो के उनको भी आप याद है जी हाँ, ये एक बंदा था, ये फलां जगह पर मुझे मिला था, उसने ये बात कही थी। तो बज़ाहिर बंदे को वही बात है कि बज़ाहिर बंदे को वो चीज़ हुई होती उसके साथ, पर उसको याद नहीं होता। जब वो चीज सामने आती है तो बंदे को पता लगता है कि ये बात हुई थी, वाकई ये बात हुई थी। और इनकी बात से पता लगता है कि हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि आपको अगर कोई भी ये बात कहता है कि मुश्किल वक्त में मदद करो, तो हमेशा आपको जो भी जिसमें जगह भी रोड पे अगर कोई भी इस तरह के एक्टिविटी नज़र आती है कि जिसमें आपको लगे कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए। जिस तरह के अक्सर इस तरह होता है कि सिग्नल्स पर हम खड़े होते हैं, कोई ऐसे ओल्ड एज अंकल्स आंटीज होती हैं जो ईज़िली सड़क पार नहीं जल्दी में कर सकती, तो उनका कोशिश किया करें हाथ पकड़कर उनको सड़क पार करवाई जाए। और इसके अलावा अगर आपको वैसे भी अगर कहीं किसी जगह कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जिस तरह कोई चीज़ सड़क पर पड़ी है, और उसको साइड करना भी एक अच्छी चीज़ है, और एक मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है।

आखिर मैंने सबकी बातों को से ये सीखा जो मैं जज कर रहा हूँ कि हमें सब पूरा दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये आपके माइंड पर है कि आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। हर एक का माइंड अपना होता है और अपने ही नज़रियात होते हैं और अपने नज़रिए को लेके वो चीज़, कोई एक बंदे के नज़दीक वो चीज़ गलत होती है और दूसरे बंदे के नज़दीक वो चीज़ बिल्कुल दुरुस्त होती है और वो उसी को अडॉप्ट कर होता है। मैं ये इसमें नेगेटिविटी की बात नहीं करता, पर चीज़ों की मैं कहता हूँ कि कीमत पे होता है कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप पे बीतती है।

और अगर आपको भी अभी किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में किसी ऐसे शख्स की आपको मैं कदम याद आई है जिसने आपके ज़िंदगी में कभी किसी वक्त कोई ऐसी बात सिखाई जो आज भी आपने ज़िंदगी में अडॉप्ट किए हुए हैं, तो एक प्यारा सा थैंक यू ज़रूर कहिए। और कभी कोई ऐसा छोटा सा शुक्रिया किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लाता है। और मैं ये अपने पहले शो में भी कह चुका हूँ कि थैंक यू ऐसी चीज़ है कि आपको अगर किसी का मूड अच्छा ना भी हो तो अगर आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो हो सकता है उसका सारा दिन अच्छा ना गुजरा और आपके एक थैंक यू उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। और हमेशा आपको आपके साथ जो भी चीज़ हो उसके लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए।

हाँ जी, बातें तो बहुत सी होगी और आप शामिल करते हैं आपके प्यारे प्यारे सा एक प्यारा सा सॉन्ग, और सॉन्ग जो है वही हम कंटिन्यू करेंगे हिंदी वर्सेस पंजाबी नॉन स्टॉप मेशअप, और साथ साथ आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी शामिल करेंगे आफ्टर द सॉन्ग, और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station
4: that plays
3: foot tapping music.

0: It's commercial time.
1: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट।
3: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
4: द स्टेशन
5: दैट प्लेज
6: फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: फजान 97.1 एफएम,
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 एफएम, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी।
9: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
10: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर, और जब आप कुछ वाकया ही

0: एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
7: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07

0: A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
5: You are listening 97.1 FM.

0: ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंगम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: It's
5: music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.
7: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening to Radio Fazer on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: الأول.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लीजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444.

0: आप संगीत मेहंदी वेडिंग रिसेप्शन होम एंड वेन्यू निकाह पार्टीशन सेंटर पीसेस वेलकम साइन एंगेजमेंट हाउस लाइटिंग वॉक अवे डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट वो भी आपके बजट में तो देर किस बात की अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
1: hayatweddings.co.uk
2: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सुनिए नहीं सुन के तेरे लारियां नो
1: जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे